0: पर अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है अनुपम पाठक और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। और आज के दिन की शुरुआत एक शानदार गोल्ड के साथ हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक गोल्ड के साथ। दोस्तों, दिस केम इन द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहां वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री एट द एशियन गेम्स, विनिंग गोल्ड इन द वुमेन्स रिकर्व टीम इवेंट आफ्टर डिफीटिंग द giant South Korea in a thrilling final. We also saw Kumkum Mohammed was the star of the final, showing remarkable composure under pressure. The 17-year-old repeatedly delivered crucial tens when India needed them most, including the decisive shot that sealed the gold medal. Ankita Bhagat provided valuable experience and consistency, while Kirti had moments of pressure during the final, but India's collective effort proved decisive when this was the first time in history that India ever reached the final of this event. Anupam.
3: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कंपाउंड आर्चरी में किया था, वैसे ही आज रिकर्व में भी हो रहा है। रिकर्व थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म है और आप तो बता ही चुकी हैं, स्वर्ण पदक आ गया और एक और स्वर्ण पदक पर पूरी निगाहें हैं। यह है मिक्स्ड इवेंट, जिसमें आज भारत की टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला, सेमीफाइनल में जापान को 5-3 के स्कोर से हराया और इसी वक्त चल रहा है उसका फाइनल और इसमें पीछे है भारत चीन से और ये बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। और बल्कि इसमें सारे शूट्स हो चुके हैं, सारे तीर मारे जा चुके हैं और लगता है भारत इसमें अब पीछे रह गया है। 2-4 से पहले पीछे था और अब 3-5 से पीछे हो गया है, यानी रजत पदक, फिर भी एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और इसके अलावा अभी मेंस टीम तो बाकी है।
2: करेक्ट एंड कमेंडेबल स्टार्ट टू द डे। इनफैक्ट भारत के

0: से रग्बी सेवन के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों. इंडिया प्रोड्यूस अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस टू डिफीट मलेशिया 26-5 इन द वुमेन्स रग्बी सेवन पूल ई मैच एट द एशियन गेम्स. भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज वाइल टूडू संध्या रानी एंड कुमारी आरती ऑल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री ओवर मलेशिया.
1: बिल्कुल, और अब हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा आपको और भी बता सकते हैं. इसमें धीरज देव बुमरा जो विश्व में नंबर एक की पदवी रखते हैं वो थे, और साथ में कुमकुम महोद थी. बहुत लड़ाई की, बहुत अच्छी लड़ाई की, और हम कहेंगे सेमीफाइनल तक पहुंचना, और फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है. तो एक स्वर्ण पदक और दूसरा रजत पदक. इसके अलावा कुश्ती में हम बात करते हैं. कुश्ती में आज बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है. फ्री स्टाइल के मुकाबले थे, भारत के 4 पहलवान थे. सबसे पहले प्रिया 60 किलोग्राम में कजाक की काइजी मेडट से हार गई और ये चित होकर हारी, यानी कि विक्ट्री बाई फॉल मिली मेडट को. और 50 किलोग्राम में दीपांशी वो जापान की यूई सुशाकी के विरुद्ध थी, और ये भी टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर यूई ने मुकाबला जीत लिया. और इसके बाद 125 किलोग्राम में रजत राहुल, ये कुश्ती जरूर थोड़ा सा उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वो हार बैठे मुकाबला पॉइंट्स अंकों के आधार पर. लेकिन 65 किलोग्राम में जिस पर सबसे अधिक उम्मीदें थी सुजीत, उन्होंने अफगानिस्तान के उमर सैयद को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर परास्त किया. और इस समय उनका मुकाबला चल रहा है ईरान के अब्बास इब्राहिम के साथ, और ये पहला राउंड है और देखते हैं इसमें क्या होता है. बस इसकी शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में.
0: राइट, गुड न्यूज. वन गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग. नाउ लुक, लेट्स हैव अ लुक एट वॉलीबॉल आल्सो. इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया 3-1 इन द मेंस वॉलीबॉल 5th-8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच. इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23. इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23.
1: बिल्कुल, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर आई है. वॉलीबॉल में भारत ने अपने पूल में सारे मैच जीते थे. भारत वॉलीबॉल में एक अच्छी टीम है. हालांकि 3 कांस्य पदक आते रहे, लेकिन इधर करीब पिछले 20 साल से कोई पदक नहीं आया है. और अब वो हार गए थे उसके पश्चात पाकिस्तान से, और अब वो 5वें से 8वें स्थान के लिए क्लासिफिकेशन मैच खेल रहे हैं, जिसमें से पहला मैच उन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से यानी लगातार सेट्स में हरा दिया है. अब 5वें और 6ठे स्थान के लिए उनकी लड़ाई होगी, अगला मैच होगा.
0: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट वेयर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू 3rd प्लेस आफ्टर चाइना हु वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2 रेसेस. इंडिया हैड इनिशियली फिनिश्ड 4th एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस, बट द सबसिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम. सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट टीम आल्सो.
1: बिल्कुल, समय कम है लेकिन इतना बता दें सबको इंतजार है आज हॉकी का, जिसमें भारतीय लड़कियां स्वर्ण पदक पर निशाना साधेंगी. चीन के विरुद्ध मैच होगा. इसके अलावा बॉक्सिंग में 3 फाइनल्स हैं, तो हमारी अपडेट्स के साथ बने रहिएगा.
0: जी, और जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज भारत की पोजीशन क्या है दिन की शुरुआत पे ऑन द मेडल टेबल, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इंडिया हैज मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द 7th स्पॉट. जी हाँ, 7वें स्थान पर अब भारत आ चुका है. कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 67 मेडल्स हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज है. ऑल थैंक्स टू द फैक्ट दैट आज शूटिंग ने सुबह सुबह हमें एक और गोल्ड दिला दिया. और आपको बता दें सिर्फ शूटिंग, सॉरी यस, आर्चरी ने हमें एक और गोल्ड दिला दिया. और आपको बता दें कि आर्चरी में इसके साथ अब 4 गोल्ड हो चुके हैं और 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट 5 मेडल्स. और शूटिंग की अगर हम बात करें तो 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 15 मेडल. यानी सुबह सुबह जो आर्चरी ने हमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर दिलाया है, उसकी बदौलत भारत अब 8वें स्थान से 7वें स्थान पर आ चुका है मेडल टेबल पर. और हमारे टोटल मेडल्स भी फिलहाल अब 67 हो चुके हैं, विच इंक्लूड्स 11 गोल्ड. होपिंग दैट द डे टर्न्स आउट इवन मोर बेटर फॉर इंडिया. दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. विल जॉइन back at 10:30 a.m. with the live updates of the ongoing Asian Games 2026.
2: Asian Games 2026, Aichi, Nagoya.
3: Abhi aap. நேர்களே, இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: आज दिन की दूसरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। 20वें एशियाई खेलों में दिन क्या शानदार है रहा है भारत के लिए अब तक। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। पहली अपडेट में हमने बताया कि आर्चरी की रेंज से स्वर्ण पदक आया, रजत पदक आया, और उसके बाद अब बॉक्सिंग का रिंग लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और क्या शानदार जीत है उनकी। पिछली बार भी उनके पास पदक था, वो सिल्वर था। इस बार उन्होंने चीन की जी बाओ को परास्त किया। उनके मुक्कों का दम देखा सारी दुनिया ने। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में ज़रूर थोड़ा मुश्किल से उनको हुई थी, लेकिन आज वो पूरे फॉर्म पे थी और स्वर्ण पदक एक और भारत को।
2: जी, और अगर रेसलिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसी न्यूज़ को आगे बरकरार रखते हैं। भारत के सुजीत कलकल ऑल्सो एडवांस टू द मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल विद अ डोमिनेटिंग 10-0 विक्ट्री ओवर ईरान्स अब्बास इब्राहिम जदेह सवादो की बाय टेक्निकल सुपीरियोरिटी। सुजीत को सिर्फ 30 सेकेंड चाहिए थे ऑफ द सेकेंड पीरियड टू फिनिश द क्वार्टर फाइनल, एडिंग 2 मोर पॉइंट्स टू कम्प्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन। और इसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अब प्रवेश कर लिया। और आपको ये भी बता दें कि सेमीफाइनल का बाउट भी शुरू हो चुका है, जिसका हो सकता है हम आपको अपडेट इसी अपडेट
1: जी, बिल्कुल मैं तैयार हूँ इसके लिए।
2: जरूर,
1: ये उनका मुकाबला हो रहा है जापान के कोतोरो कियोका से। और पहला पीरियड में अब बहुत बढ़िया दाम लगाए वहां पर सुजीत ने। एक समय तो 5-2 की बढ़त ले ली, लेकिन वहां पर चैलेंज किया जापान के पहलवान ने और वो 2 अंक चैलेंज को मान लिया गया, वापस कर दिया गया। 3-2 से बढ़त थी, इसके बाद जापानी ने एक बढ़िया दाम लगाया, 3-3 की बराबरी। मुकाबला बस अभी खत्म हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है अंकों के आधार पर सुजीत अब फाइनल में पहुंच गए हैं। कंफर्मेशन बस होने वाली है।
2: चलिए, थोड़ा इंतजार रहेगा कंफर्मेशन का उसका। लेकिन टैक्वांडो की दुनिया से आपको बता दें कि भारत का सफर इसके अंदर आकर आज समाप्त हो गया। इंडियाज कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान रीता बक्शेवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स। मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच्ड बिटवीन द टू कॉम्पिटिटर्स।

0: और इसके अलावा साइकिलिंग में आज तमाम मुकाबले हैं। सुबह से ही वेलोड्रोम जो है गुलजार हो जाता है। आज भारत कई स्पर्धाओं में महिलाओं के ओमनियम में हर्षिता जाखड़ वो 12वें स्थान पर रहीं और कुल 13 लोग ही थे तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब पुरुष कीरिन में रोनाल्डो सिंह थे, वो क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई वो भी नहीं कर सके, लेकिन डेविड बेकहम उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया, उन्होंने क्वालिफाई किया और वो पहुंच गए हैं अगले चक्र में। लेकिन इसके बाद रिपेचेज में डेविड ने क्वालिफाई किया है और रिपेचेज में रोनाल्डो को भी मौका मिल गया और रोनाल्डो ने यहाँ पर बढ़िया खेला, छठे स्थान पर आए और अब वो सेमीफाइनल चक्र के लिए पहुंच गए हैं। यानी उनकी साइकिल के पैडल अभी चलने वाले हैं भारतीय साइकिलिस्ट के।
1: उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी खबर लेकर आए वो भारत के लिए। आगे बढ़ेंगे सेपेक तक्रो की तरफ भी दोस्तों। एंड इन द ग्रुप ए मैच ऑफ द सेपेक तक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड हैव एब्सोल्युटली डेसिमेटेड इंडिया। जी हाँ, दे टुक द सेकंड सेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। दे वर ड्राउन 13-15 by their opponents in the first set as they lost it earlier. India have thus bowed out of the event after losing all three of their group games. जी हाँ, भारत का सफर इसके अंदर भी समाप्त हो ही गया।
0: और रेसलिंग में एक खबर और भी है, अच्छी खबर है। दीपांशी हार गई थी 50 किलोग्राम भार वर्ग में आज, लेकिन उनको मौका एक और मिल गया है रेपेचेज में और कंबोडिया की पहलवान के साथ उनका मुकाबला बस इस समय शुरुआत हो गई है। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है।
1: जी, और आपको याद दिला दें कि आज के दिन की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ हुई थी, जहां पर आर्चरी ने हमें आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रदान किया। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो पहली बार आर्चरी की हिस्ट्री में एशियन गेम्स में ऐसा हुआ है कि भारत की टीम फाइनल के अंदर पहुंची। और हम बात करें वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, जिसने आज हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द गोल्ड, thereby defeating South Korea in a very thrilling final. वहीं पर अगर हम recurve mixed team के उसकी भी बात करें finals की भी, तो उसमें भी हमने देखा कि भारत ने आज हमें उसके अंदर भी एक silver पदक ला के दिया. So recurve mixed team के अंदर we were able to satisfy ourselves with a silver.
0: और ये और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कोरिया जो है वो पावर हाउस है, कोरिया 10 बार चैंपियन रहा है, उस टीम को परास्त करना और इस अंदाज से परास्त करना बहुत ही शानदार, लड़कियों ने गजब करके दिखाया।
1: जी, और मिक्स टीम सेमीफाइनल, मिक्स टीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी गॉट द सिल्वर आउट देयर डेफिनेटली, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर गुड न्यूज ऑफ द डे आल्सो, और शुड आई से a nice news that's coming up away, which is in rugby sevens, where India produced a dominant performance to defeat Malaysia 26-5 in the women's rugby seven pool E match at the Asian Games. Bhumika Shukla scored 3 tries, while Tudu Sandhya Rani and Kumari Aarti also crossed the line as India secured a comfortable victory.
0: साक्षी, बहुत अच्छी बात इसलिए भी है ये क्योंकि रग्बी सेवन का पहला मैच जो कल भारत ने खेला था बहुत बुरी तरह हारे थे, उसको देखते हुए आज उतनी ही अच्छी जीत है। 26-5 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है।
1: राइट, मेडल टेबल पे हो सकता है थोड़ी सी हलचल जरूर मचे, लेकिन द लास्ट अपडेट दैट वी हैड वाज दैट इंडिया वाज स्टिल एट द सेवंथ पोजीशन। लेकिन क्योंकि अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि रेसलिंग के अंदर भी हो सकता है मेडल्स आए, तो मेडल टेबल में थोड़ी बहुत हलचल तो मचेगी। हम आपको वो अपडेट अगले अपडेट में लाकर देंगे कि भारत की पोजीशन में क्या उत्थान हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं ऑन द मेडल टेबल। फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक सेइंग गुड बाय, विल बी जॉइनिंग बैक अगेन इन द नेक्स्ट अपडेट एट 11:30 AM।
2: நேர்கள் இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: நேர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और दोस्तों इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे हैं 11:30 एंड ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे सो फार इन द लास्ट वन आवर व्हिच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहां मेंस रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो हमारी भारत की जिन्होंने प्रवेश किया था, अब उन्होंने वहां पर भी जीत दर्ज करके फाइनल्स में गोल्ड मेडल के लिए अपने लिए जगह बना ली है। जी हाँ, आपको बता दें दैट इंडिया हैव स्टॉर्म्ड इनटू द मेंस रिकर्व टीम फाइनल्स आफ्टर डिफीटिंग ईरान 6-0 इन अ डोमिनेंट सेमीफाइनल। ईरान स्टार्टेड द थर्ड सेट स्ट्रॉन्गली विद 29-30, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड विद अ सुपर्ब 56 टू एज द सेट 56-55। नीरज चौहान हिट अ 10, यशदीप बोगे एडेड ओवर 9 एंड धीरज ब्रह्मदेवारा सील्ड द विक्ट्री विद अ क्रूशियल 9। इंडिया हैड अर्लियर वन द फर्स्ट टू सेट्स 58-53 and 56-53 to take a commanding 4-0 lead, and thereby the Indian trio of Dheeraj, Neeraj and Yashdeep will now face South Korea in the gold medal match. Aur aapko bata de ki kyunki gold medal mein ab men's recurve team semi-final jo khel ke abhi pravesh kari hai, aaj din ki shuruaat bhi archery ki team ne hamare liye bahut acche se ki thi, wahi mahila recurve archery team ne hame gold medal dilwaya tha aur recurve mixed team ke semi-finals ke baad bhi humne dekha tha ki kis tarah se Bharat ne उसमें भी हमें सिल्वर मेडल दिलवाया जो फाइनल्स हुए थे। सो क्योंकि हमारी महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने आज हमें स्वर्ण पदक दिलवाया है, तो चलिए आइए सुनते हैं कि कुमकुम मोहत ने आज क्या कहा।
3: उसमें उम्मीद मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मेडल तो आएगा, 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
4: बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है कि इस स्पर्धा में, रिकर्व की स्पर्धा में आज तीन मुकाबले हैं साक्षी, और तीनों में पदक हैं। एक स्वर्ण आ चुका, एक रजत आ गया और एक स्वर्ण ही आना चाहिए। और भी एक और पदक जिसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था अपने पिछली अपडेट में, सेलिंग में डिंगी में ICLCA 7 क्लास जो होती है उसकी डिंगी, उसमें नेत्रा कुमानन ने फाइनल रेस 1 और 2 आज थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल थाईलैंड के सोफिया मॉन्टगोमरी को मिला और सिल्वर पदक जो है वो सिंगापुर के पास गया। उनका जो समापन था वो 14 अंक कुल थे, नेट भी 14 अंक थे, हांगकांग की स्टेफनी नॉटन के भी 14 ही अंक थे, लेकिन किस्मत वाली रही यहाँ पर नेत्रा इसलिए क्योंकि रिकैलकुलेशन जब होता है अगर बराबरी होने पर, उसमें उनको एक पेनल्टी कम मिली थी और ज़्यादा थी स्टेफनी की, तो यानी ये कांस्य पदक भारत के पास और आया।
2: जी, रेसलिंग की दुनिया से भी आज बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहली अच्छी खबर जो हमने आपको दी थी दिन में थोड़ी देर पहले, वो ये है कि इंडिया की

0: லவ்லினா போர்கோஹேன் பேக்ட் தி கோல்ட் மெடல் பை டிஃபீட்டிங் சைனாஸ் பவுசி இன் தி உமன் 75 கிலோகிராம் கேட்டகரி அட் தி ஏஷியன் பவுட். லவ்லினா மெயின்டெய்ன்ட் ஹர் கம்போஸ்ட் அப்ரோச் த்ரூ அவுட் த பவுட், அலோயிங் பவு டு கம் ஃபார்வர்ட் வைல் ரெஸ்பாண்டிங் வித் எஃபெக்டிவ் கவுண்டர் பஞ்சஸ். ஆஃப்டர் வின்னிங் தி ஃபர்ஸ்ட் டூ ரவுண்ட்ஸ், தி இந்தியன் பாக்ஸர் கண்ட்ரோல் தி தேர்ட் ரவுண்ட் அஸ் வெல் டு கம்ப்ளீட் அ டாமினன்ட் விக்டரி பை கோயிங் அஹெட் அண்ட் வின்னிங் தி பவுட் பை அ யுனானிமஸ் 5-0 डिसीजन. आज उनका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो लवलीना बोरगोहेन को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ साथ इट कुडंट हैव बिकम अ बेटर डे फॉर हर बिकॉज द बर्थडे जस्ट बिकेम इवन स्वीटर एंड परफेक्ट फॉर लवलीना बोरगोहेन, हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली सेकेंड इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आफ्टर द लेजेंडरी एमसी मैरीकॉम. द 29-year-old इंडियन डिफीटेड चाइना ज़ियोबा 5-0 इन अ क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट.
1: बिल्कुल, और ये जो लवलीना है इसकी जितनी तारीफ करें सुनहरा उपहार उन्हें आज मिला है. सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जिस तरह से उन्होंने खेला था, जिस तरह से बॉक्सिंग की थी, लगातार कॉम्बिनेशन पंचेस लगाए थे, वो तो देखने ही वाले थे. हम बात सेलिंग की कर रहे थे, सेलिंग में और लोग भी हैं. विष्णु सर्वनन इस समय मेंडिंगी उसमें कांस्य पदक से चूक गए, वो चौथे स्थान पर आए हैं. और जो विंड सर्फिंग है, आज वैसे पूरे जापान में हवाएं बहुत चल रही हैं, खासतौर से जहाँ जहाँ टूर्नामेंट चल रहा है. आर्चरी में हवाओं का बहुत कहर रहा है. विंड सर्फिंग में काव्या कोयलो सातवें स्थान पर हैं ओपनिंग सीरीज में, सीरीज दसवीं की रेस के बाद. और मिक्स्ड सर्फिंग में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार वो पाँचवें स्थान पर बने हैं. गोल्फ में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि महिलाओं के स्ट्रोक प्ले में प्रवणी उर्स जो हैं वो पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, और दीक्षा डागर और अदिति अशोक के साथ जो भारतीय टीम है वो दूसरे स्थान पर इस समय चल रही है. बस ये बढ़त बनाए रखें. और पुरुषों की बात करें तो वीर अलावत 10वें स्थान पर हैं, सप्तक तलवार 11वें, और पुरुषों की जो टीम है उसमें भारत जो है इस समय छठे स्थान पर चल रहा है. तो गोल्फ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं.
0: जी, एंड अ वेरी क्विक अपडेट विच वी लेफ्ट यू इन द लास्ट अपडेट आपके साथ, जब हमने छोड़ा था पिछले अपडेट में, कि भारत के सुजीत खलखल पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग अपसेट डिफीटिंग रेनिंग ओलंपिक चैंपियन एंड होम फेवरेट कोटारो क्यू का इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल. और इसके साथ अब वो गोल्ड मेडल के लिए 65 किलोग्राम फाइनल कैटेगरी में कम्पीट करेंगे आज दोपहर 3:45 बजे, टू बी मोर स्पेसिफिक 2:46 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द न्यूज हैज बिकम ऑफिशियल. सुजीत 1-3-3 ऑन क्राइटेरिया, scoring the decisive final point after trailing 0-2 in the opening period. The Indian wrestler fought back brilliantly in the second period, scoring 3 points to seal a memorable victory. Here's rooting for Sujit.
1: और उनका final जो होना है वो तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीव के साथ होना है. तो उम्मीद करें एक स्वर्ण पदक और भारत की राह देख रहा है.
0: Right, and a quick update also from wrestling to just finish this off. India's Dipanshi has kept her medal hopes alive after dominating Cambodia's Deep Samnang in the women's 50 kilogram repercharge. She secured a 10-0 victory by technical superiority to book a place in the bronze medal bout. और अब आपको भारत की दीपांशी भी आज दोपहर 3:58 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेलते हुए अपने बाउट में नजर आएंगी. होपफुली ऑल्सो गेटिंग अस अ पोडियम फिनिश इन दैट. दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है अनुपम पाठक. हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत. दोबारा एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 बजे.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन நேர்களே, இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Hello and a very warm welcome to all our lovely listeners who are tuning in right now at 12:30 p.m. on Akashvani. Hum lekar aage aapke liye ongoing Asian Games 2026 ke live updates. Main hoon Sakshi Mandwal. Mere saath yahan par maujood hai Anupam Pathak. To sabse pehle the big news of the day coming from the world of archery. Aaj hamare archers ne Bharat ka dil khush kar diya. Ji haan, hume dekha ki men's recurve team final mein Bharat ne silver medal apne naam kar liya. Ji haan, India won the silver in the men's recurve team event after South Korea clinched the gold medal with a 2-0 set win in the final phase, completing a 5-1 victory overall. India started the third set strongly with Neeraj Chauhan hitting a 10, followed by 9s from Yashti Boge and Dheeraj Bommadevara. However, Neeraj's 7 in the second rotation hurt India's chances as they finished the set on 54. South Korea needed 27 from their final 3 arrows to win the gold. Lee Woo-yeok hit a 10, Kim Jae-deok a 9, and Kim Woo-jin sealed the title with a 9 as the Koreans secured back-to-back Asian gold medals in the event. Anupam.
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर। कुल मिलाकर हम इसको ज़रूर कहेंगे क्योंकि आर्चरी में अगर हम पिछले प्रदर्शनों को देखते हैं तो इस बार बहुत पिछले इसके पहले रिकर्व में कुल मिलाकर एशियन गेम्स में 3 पदक आए थे, इस बार आज एक दिन में 3 पदक आए हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। हालांकि ये जो पहला सेट था उसकी शुरुआत बहुत अच्छी भारत ने की थी, दोनों बराबर बराबर थे और एकदम आखिरी एरो पर जाकर ये स्थिति आई थी कि मामला बराबरी पर हुआ वरना भारत जीतता, उसको अंक बराबर रहे। दूसरे सेट में यशदीप ने एक एरो गड़बड़ किया और जैसा आपने बताया आखिरी सेट में नीरज का वो तीर ऐसा भटका, लेकिन आज के लिए ये बात ज़रूर कही जाएगी जब हवा थोड़ी सी आज तेज चल रही थी लगातार, तो हवा के साथ अमूमन लोगों की शिकायत आर्चर्स की रहती है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन प्रदर्शन और अंतिम निर्णय जो आता है वही आपको पदक तालिका पर ले जाता है, पोडियम पर ले जाता है, लेकिन फिर भी रजत बहुत स्वागत योग्य बात है। और इसके अलावा हम बात करें, अभी दो जगह दो बॉक्सर्स हमारे उतरने हैं, दो जगह स्वर्ण पदक की उम्मीद है। उसके अलावा अभी कुश्ती में फाइनल खेलना है नीरज को और कांस्य पदक की भी उम्मीद है दीपांशी से। मैं आपको ताज़ा जानकारी बता दूं, इस समय केनो में कयाक क्रॉस में शिखा चौहान 9वें स्थान पर रहकर क्वालिफाई की थी, हमने बताया था क्वार्टर फाइनल में वो 3रे स्थान पर आई, क्वालिफाई नहीं कर पाई। प्रद्युम्न सिंह राठौर ने क्वालिफाई किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल्स बीच हो चुका है, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और 4थे स्थान पर रहे, जबकि टॉप पहले जो 2 स्थान पर आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं।
1: जी, और डेंगू की दुनिया से भी आपको कुछ लेटेस्ट खबर दे दे कि आज इंडियाज नेत्रा कुमानन सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डिंगी सेलिंग इवेंट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक इन द फाइनल रेसेस। आफ्टर अ डिफिकल्ट ओपनिंग रेस नेत्रा बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली टू विन द सेकंड फाइनल रेस। शी फिनिश्ड लेवल ऑन पॉइंट्स विद हांगकांग स्टेफनी लुईस नॉर्टन, बट नेत्रा सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉर्टन सॉ हर क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। एंड जस्ट वन क्विक गुड न्यूज दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर एंड हैड शेयर्ड इन द लास्ट अपडेट की बॉक्सिंग की दुनिया से आज हमें गोल्ड मेडल आ गया। जी हाँ, द बर्थडे गर्ल इंडियाज लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाउजी इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम गोल्ड मेडल बाउट एट द

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं दोस्तों अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। घड़ी में बज रहे हैं दोपहर की 1:30 एंड द गुड न्यूज दैट हैज कम इन द लास्ट 1 आवर नाउ कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सेपक तक्रो, जहां पर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर कर लिया अपने लिए और अपने देश के लिए। दे लॉस्ट टू जापान 0-2 इन द थर्ड प्लेस प्ले ऑफ एट द एशियन गेम्स। इंडिया लॉस्ट बोथ द सेट्स 12-15, 13-15 टू कंप्लीट अ स्ट्रेट सेट विक्ट्री एंड देयर बाय फिनिश ऑन द पोडियम। हारे तो जरूर भारतीय, लेकिन भारत की टीम यानी, लेकिन क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल मैच था तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत हैज बीन एबल टू नाउ फाइनली सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर देमसेल्व्स।
2: क्या बात है। और आज का दिन वैसे भी पदकों के हिसाब से खासा अच्छा रहा है, बल्कि जैसे जैसे एशियन गेम्स अपने समापन की ओर बढ़े हैं हमारे पदकों की संख्या एकदम से बढ़ी है खासी। आज बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक आ चुका है, कुश्ती में 1 स्वर्ण पदक की उम्मीद है, बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदकों की और उम्मीद है। हम अपनी अगली अपडेट्स में बताते रहेंगे। इसके अलावा आर्चरी में 1 स्वर्ण पदक आ चुका है, 2 रजत आ चुके हैं, अभी एक कांस्य की आपने बात की तो ये तो बहुत अच्छा था। और इसके अलावा हाँ, सेलिंग में नेत्रा कुमारन ने एक कांस्य पदक हासिल किया है। इस बीच हम ताज़ा खबर आपको बता दें, साइकिलिंग में जो डेविड बेकहम रिपेचेस से पहुंचे थे उनका सफ़र समाप्त हो गया है और अब वो 7वें से 12वें स्थान के लिए अपनी साइकिल में पैडल में ताकत लगाने का प्रयास करेंगे। पुरुषों के मेडिसिन के मुकाबले भी चल रहे हैं। इस समय भारत 8वें स्थान पर है, जिसमें हर्षवीर सिंह शेखों और विश्वजीत सिंह की जोड़ी है। गोल्फ में बहुत अच्छी खबर है, 3रा राउंड चल रहा है लड़कियों की ओर से है। हमारी जो टीम है प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की 3रे राउंड के बाद 2रे स्थान पर पहुंची हुई है। और महिलाओं के स्ट्रोक प्ले की बात करें तो राउंड 3 में प्रणवी उर्स 1ले स्थान पर इस समय बनी है। बस ये लीड अपनी बनाए रखें, ये दुआ करेगा हर भारतीय प्रेमी।
1: जी, और वुमेन्स स्किफ इवेंट के अंदर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू द 3rd प्लेस आफ्टर चाइना।

0: disqualified from two races. India had initially finished fourth at the end of all races, but the subsequent disqualifications altered the standings and elevated the Indian pair to the podium. वहीं रग्बी सेवन्स के अंदर आज भारत ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ मलेशिया को 26-5 से हराकर वुमेन्स रग्बी सेवन पूल ई मैच में जीत हासिल कर ली. भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज, वायल Tudu Sandhyarani and Kumari Aarthi also crossed the line as India secured a comfortable victory.
1: बिल्कुल, और रग्बी सेवन में लड़कियों को अच्छा करते हुए देखना इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है. रग्बी सेवन बहुत ज्यादा ताकत वाला, बड़ी स्पीड वाला और कहते हैं ना भिड़ंत वाला खेल है, तो उसमें अगर लड़कियां पहला मैच तो उन्होंने खासा खराब खेला था, बहुत बुरी तरह हारी थी, लेकिन आज उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. और हम आपसे गोल्फ की बात कर रहे थे, पुरुषों में हाल बहुत अच्छा नहीं है. युवराज संधु हैं, वीर अहलावत हैं, सब तक तलवार हैं, तीसरा राउंड में भी हो रहा है इस समय. और वीर अहलावत 10वें स्थान पर हैं, सब तक उनके ठीक पीछे 11वें स्थान पर हैं, और युवराज संधु जो हैं वो 23वें स्थान पर हैं, और जो टीम है वो मिलाकर छठे स्थान पर है. तो लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें तो साक्षी सारी निगाहें रहने वाली हैं हॉकी के मैच पे, जहां पर एक स्वर्ण पदक की उम्मीद है. भारत उसमें उतरेगी, भारत की लड़कियां उतरेंगी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने के लिए. इसके अलावा दो बाउट्स जो होनी है, ज़बरदस्त बाउट्स होने की संभावना है बॉक्सिंग में. और हरियाणा के हैं दोनों, परवीन हुडा जो हैं वो रोहतक से आती हैं, अंकुश पंघाल जो हैं हिसार से आते हैं, साउथ पा हैं, और जो लेफ्ट हुक लगाते हैं ना, तो उसको देखने की बात ही अलग होती है रिंग में. बस देखें अच्छा करें, पहले कबड्डी खेला करते थे, बाद में बॉक्सिंग में आ गए.
0: यस, तो आपको आज देखने को मिलेंगे दोपहर 2:15 से दो बॉक्सिंग के बाउट्स और रेसलिंग के भी दो बाउट्स. लेकिन अभी अगर आपको एक और अपडेट दे दे तो टैक्वांडो की दुनिया से है, जहां कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान्स रीता बाक्शीवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स. मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच बिटवीन द टू कॉम्पिटिटर्स. एंड ऑफ इंडियाज कैंपेन इन दिस स्पोर्ट विद इट. सो कशिश मलिक की इस हार के साथ भारत का टैक्वांडो में सफर भी समाप्त हो गया है. एंड ए क्विक ग्लांस थ्रू हाउ द मेडल टेबल नाउ स्टैंड्स, भारत की पोजीशन इस वक्त है 6 स्थान पर इन द मेडल टेबल. हमारे पास कुल मिलाकर अब 72 मेडल हो गए हैं, जिसमें हमारे पास हैं 12 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज. एंड थैंकफुली दिस इज अ मच मोर इम्प्रूव्ड स्पॉट दैट इंडिया प्रेजेंटली होल्ड्स कंपेयर टू वेयर वी वर यस्टरडे ऑन द 8th वन. लेकिन 8वें से 6ठे पे, और उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे कदमों के साथ ये सफर चौथे तक भी समाप्त हो सके.
1: पिछली बार चौथे पे था, लगभग उसके नजदीक तो हम पहुंच ही सकते हैं. और भी इसमें दीपांशी भी कोशिश कर सकती है, लगभग 4 बजे के आसपास उनकी कुश्ती होगी, और सुजीत पर तो सबकी निगाहें होंगी
0: जी. और इसके साथ अब मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत. हम आपके साथ दोबारा एक बार दोपहर के 3:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. थैंक यू एंड गुड बाय.
2: நேர்கள் இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
3: ஏய், இங்க நான் தா கிங்.
4: கண்ணா, இது FM Rainbow 102.8. இங்க எல்லாமே மாசஹிட்டு.

0: நேர்களே, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: के अभी के ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स में आपको बता दें कि मेडल्स की आज बौछार हो रही है, खास तौर से गोल्ड मेडल्स की फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर बात करें तो रेसलिंग के अंदर द गोल्ड हैज केप्ट ऑन जस्ट बीइंग एडेड, बिकॉज रेसलिंग में हमने देखा कि किस तरह से आज दिन की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद भी हमारी तरफ से जहां दीपांशी ने अभी भी मेडल होप्स रखे थे जारी, वही हमने देखा कि सुजीत कलकल he went on to win the gold medal in the men's freestyle 65 kilo final by defeating his Tajikistan opponent 10-9. ek bahut solid comeback inhone kiya, because jahan ye almost 100 points piche the, ji ha 2-9 se gapping thi, wahi par last mein humne dekha one of the comebacks that will be remembered for a very long time in years to come, jo sujit kalkal ne aaj comeback kiya aur bharat ko wrestling mein 65 किलोग्राम के मेंस फ्रीस्टाइल 65 केजी फाइनल के अंदर गोल्ड दिला दिया। मेरे साथ है अनुपम पाठक एंड अनुपम द बेस्ट न्यूज।

0: the day that has just started for India has been restless. बिल्कुल,
1: आज का दिन ही बहुत अच्छा है. और देखिए उससे हम लोग कितने खुश थे कि कंपाउंड आर्चरी में 3 गोल्ड मेडल आए हैं. आज का दिन तो उससे भी बेहतर है. 3 गोल्ड मेडल, हैट्रिक लगी है. बॉक्सिंग में, कुश्ती में गोल्ड मेडल आया. और अब मैं भी सुजीत की जो बाउट देखी है ना, तो मन कर रहा है खाली उसी की बात करूं.
0: सर, अरे जरूर प्लीज.
1: इतनी कठिन बाउट, 2-9 से पीछे हैं आप, एक अंक और भी आप पीछे हो गए, गंवा बैठे, तो आपके हाथ से बाउट निकल जाएगी. उस समय भी जो लड़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं, जूझना जानते हैं, वो दिखाया. लेग अटैक किया, एक के बाद एक 3 मूव बनाए, 6 अंक कमाए. चौथा मूव उन्होंने ऊपर से बनाया, उसमें अंक कमाया, 8 अंक एक साथ, और 10-9 से अंकों के आधार पर विजय. विश्व नंबर 2 हैं तो भाई इसीलिए हैं, गजब हैं ये. और भिवानी की कहते हैं ना, बॉक्सर्स वहां से आते हैं, बॉक्सिंग की फैक्ट्री है, पहलवान भी वहां से वैसे ही आते हैं.
0: क्या
1: बात है. तो बॉक्सिंग की बात करते हैं. अंकुश पंघाल ने हैट्रिक पूरी की है, 3रा स्वर्ण पदक दिला दिया है भारत को, कोरिया के किम मिन सियांग को परास्त करके. और ये भी खासी मजबूत फाइट रही, बहुत तगड़ी बाउट थी. अंकुश साउथपा है, साउथपा का जो पंच होता है देखने में बड़ा दर्शनीय होता है. सियांग को उन्होंने पहले राउंड में ही पीछे कर दिया, बहुत तेज उन्होंने अटैक किया और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से उन्होंने पहला राउंड जीता. दूसरे में सियांग ने कोशिश की प्रत्याक्रमण करने की, लेकिन खास बात हमने जो देखी, अंकुश बिल्कुल अपना गार्ड नीचे करके खेल रहे थे, बिल्कुल ओपन गार्ड खेल रहे थे. आओ मुझ पे अटैक करो, मुझ पे अटैक करोगे तो मैं बताऊंगा कि सीधे पंच कैसे मारे जाते हैं. दूसरा राउंड 5-0 यानी कि सर्वसम्मत से सारे जजेस ने उनके पक्ष में किया. इसके बाद तीसरे में तो उनको बस रिदम बनाए रखना था, समय बिताना था, उन्होंने वो किया. लेकिन ये दिखाते हुए कि देखो मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूं, मेरी आदत है आक्रमण करना. और स्प्लिट डिसीजन जरूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर बहुत शान के साथ 3रा स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में भारत का, गजब का दिन आज.
0: जी, और आपको ये भी बता दें कि बॉक्सिंग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो परवीन हुड्डा भी आज कमाल का बाउट खेल गई, बिकॉज उन्होंने भी शी हेल्ड हर नर्व्स इन अ क्लोजली फॉट फाइनल अगेंस्ट चेन नियन चेन एंड द चाइनीज ताइपाई. बॉक्सर स्टार्टेड अग्रेसिवली इन द फाइनल राउंड, बट परवीन रिस्पॉन्डेड विद क्विक कॉम्बिनेशंस एंड इफेक्टिव काउंटर पंचेस एज द बाउट वेंट डाउन टू द वायर. द इंडियन बॉक्सर डिड इनफ टू एज द कॉन्टेस्ट, विनिंग बाय अ 3-2 स्प्लिट डिसीजन एंड सिक्योरिंग द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 65 kg कैटेगरी. जी हाँ, परवीन हुड्डा भारतीय बॉक्सर्स में वो तीसरी महिला बॉक्सर बनी है टू विन द एशियन गेम्स बॉक्सिंग गोल्ड आफ्टर मैरी कॉम. और याद दिला दें आपको आज, जब लवलीना बोर्गोहेन भी बॉक्सिंग के अंदर ही 75 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया. तो लवलीना बोर्गोहेन बनी दूसरी महिला बॉक्सर जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया आफ्टर मैरी कॉम. और तीसरी ऐसी बॉक्सर जो बनी है वो है परवीन हुड्डा. सो आज मेडल्स की बरसात हो रही है.
1: बिल्कुल, और परवीन रोहतक की रहने वाली हैं. और खास बात ये रही, अगर देखा जाए तो सबसे कठिन बाउट उन्हीं की रही, स्प्लिट डिसीजन भी रहा. और दोनों मुक्केबाज बहुत चपल थे, बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन परवीन ने अपनी लंबाई का भी फायदा उठाया और जो फुर्ती होती है, और इसके अलावा जो कोर्ट में आप एक चपलता के साथ मूव करते हैं रिंग में, उसका उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया. अंततः ये अबाउट उनके नाम रही. और क्या कहना. हाँ, एक चीज आप साक्षी मुझे बता रही थी कि जो सियांग थी, शायद उनको उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया था.
0: जी, शी इज बीन अ कैंसर पेशेंट. हम बता दें अपने सारे ही लिसनर्स को भी कि ये कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं, और उस फाइट के बाद, कैंसर को फाइट करने के बाद, शी इज बीन एबल टू नाउ मेक अ कम बैक. लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन के साथ यहाँ पर आप कह सकते परवीन हुड्डा ने इनको डिफीट किया है, बिकॉज चेन नियन चेन हैज बीन अ कैंसर पेशेंट सर्वाइवर. और उन्होंने पेरिस में इनफैक्ट ब्रॉन्ज भी जीता था, लेकिन उसके बाद अब जो इन्होंने कमबैक किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट पुट अप करी, बट एट द एंड ऑफ द डे शायद आज गोल्ड इनकी किस्मत में नहीं था, हमारी भारतीय बॉक्सर की किस्मत में था. इसलिए स्प्लिट डिसीजन से परवीन हुड्डा ने 3 दोस्तों को अपने नाम कर लिया. बट कूडोस टू द चेन नियन चेन ऑफ चाइनीज ताइपाई, जिन्होंने आज इतनी अच्छी फाइट पुट अप करी.
1: तो अब बस एक ही सपना है, हॉकी में भारतीय लड़कियां आए. 2 लड़कियों ने पदक दिलाया है, 1 लाल ने दिलाया है, अब लड़कियां आए और 1 पदक, स्वर्ण पदक और लेकर.
0: लेट्स होप फॉर दैट, बिकॉज द मैच इज ऑल सेट टू स्टार्ट. लेकिन उससे पहले, बिफोर वी एंड दिस अपडेट, अ क्विक लुक ऑन टू द मेडल टेबल ऑल्सो. भारत अब 5वें स्थान पर आ चुका है दोस्तों. जी हाँ, 75 टोटल मेडल्स के साथ 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज. देख कर ये फिगर्स, अब थोड़ी सी खुशी हो रही है, क्योंकि मेडल टेबल में भी भारत का स्थान अब

0: धीमे धीमे करके ऊपर आ रहा है। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान, जिनके पास इस वक्त 17 गोल्ड है, लेकिन कुल मेडल उज्बेकिस्तान के भारत से कम है, 60 है, लेकिन क्योंकि भारत की अभी 15 गोल्ड है उज्बेकिस्तान के 17, तो इसलिए भारत अभी पांचवें स्थान पर है। नंबर एक पे चाइना बना हुआ है, नंबर दो पे जापान है, तीसरे नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एंड उम्मीद करेंगे कि भारत एशियन गेम्स का ये सफर ऑफिशियली जब समाप्त करे तो चौथे स्थान पर करे, लेकिन फिलहाल तो रियल टाइम में मेडल टेबल पर भारत का है पांचवा स्थान इस वक्त के लिए। अभी के लिए फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को दीजिए इजाजत। हम आपसे दोबारा दोस्तों मिलेंगे शाम के 4:30 बजे विद द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। फॉर नाउ इट्स गुड बाय,
1: नमस्कार।
2: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போது நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अनुपम पाठक. हम लेकर आ गए आपके लिए ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन की कि कैसा रहा अभी तक का सफर. तो आपको बता दें कि वॉलीबॉल के अंदर भारत ने साउथ कोरिया को 3-1 से इन द मेंस वॉलीबॉल 5th to 8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच में हराकर जीत दर्ज कर ली. इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23. इंडिया देन क्लोज आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23.
1: और अब पांचवें छठे स्थान के लिए भारत को मुकाबला करना होगा. लेकिन इस समय सारी निगाहें जो भी खेल प्रेमी हैं उनकी इस बात पे जमी है कि क्या होगा जब हॉकी

0: मैच शुरू होगा और जब खत्म होगा तो स्कोर लाइन क्या होगी, हर एक के मन में दिल में तमन्ना यही है कि भारत की लड़कियां एक स्वर्ण पदक और लेकर आएं। और आज के दिन की जैसे शुरुआत हुई थी स्वर्ण पदकों की झड़ी के साथ, एक के बाद एक के बाद एक स्वर्ण पदक आए हैं, तो भारत की लड़कियां हॉकी में भी स्वर्ण पदक लेकर आएं। शुरुआत हो गई है, अभी अभी बस सीटी बजी है, लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है और एक मिनट हुआ है। जाहिर सी बात है स्कोर 0-0 है, अभी तक कोई भी मूव नहीं बना है इस समय तक किसी भी टीम की ओर से।
1: राइट, होपिंग दैट इंडिया पुट अप अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना विल नॉट प्रूव टू बी एन ईजी कॉम्पिटिटर टूडे, स्पेशली इन द फाइनल। बट क्योंकि आज अनुपम ने बताया कि किस तरह से दिन की शुरुआत रही, मेडल्स की बौछार होती रही है आर्चरी में, आज हमने देखा शुरुआत हुई दिन से जहां वुमेन्स रिकर्व टीम हमारे लिए गोल्ड लेकर आई, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेन्स रिकर्व टीम फाइनल्स के अंदर भी हमें सिल्वर मेडल आज मिला। वहीं अभी रिसेंट concluded wrestling bouts mein Sujit Kalkar was up against Abdul Majid Kudiv, who is from Tajikistan, in the men's freestyle 65 kg final, where Sujit Kalkar bought India the gold medal by defeating his Tajikistan opponent 10-9, making a very strong comeback, being 9-2 down. Ji haan, 9-2 se peeche the aur wahan se comeback karke finally he was able to defeat his Tajik opponent 10-9. What better than that? And also let's tell you all that Abhi Dipanshi also has kept the medal hopes for India up and alive, because she had been dominating Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kg repercharge. She secured a 10-0 victory by technical superiority earlier in the day to book a place in the bronze medal bout. Aur unka bhi ab bout aane wala hai thodi hi der mein dosto, at 3:58 PM Indian Standard Time. So he is hoping and keeping the fingers crossed, Anupam, that Dipanshi should be getting us a bronze medal tonight.
0: Bilkul aa sakta hai aur aaj wo lucky bhi rahi hain is mamle mein ki Japan ki Susaki Mui se unka mukabla hua tha, pehle hi jo unki bout thi wahi haar gayi thi aaj wo. Lekin 50 किलो के इसमें दीपांशी को अगर आपने देखा है क्या, लगता है इतनी छोटी सी बच्ची, 16 साल की लड़की, और वो कमाल करके दिखा रही है। इस समय देश की सबसे उभरती खेल प्रतिभाओं में अगर आप गिनती पे गिनिए नाम, उंगलियों पर गिनने की कोशिश करिए, तो उसमें दीपांशी का नाम आता है। तो जो जापान की पहलवान थी वो पहुंच गई फाइनल तक, तो फिर मौका मिला रिपचैज में दीपांशी को, जहां उसने कोई चूक नहीं की और ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसका मुकाबला होना है। लगता है मुझे इस हॉकी का मैच जब तक ख़त्म होने वाला होगा तब तक शायद वो बाउट भी हो जाए। और आपने सुजीत की बात की थी, सुजीत कलकल की बात तो हम बार बार बार बार करना चाहेंगे। आज सबको लगने लगा था, हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये बाउट तो सुजीत के हाथ से गई, 0-2 से पीछे था, इसके पहले 8 अंक हो चुके थे और उसको क्या करेगा। लेकिन एक ही आदमी था जिसको भरोसा था, नहीं अभी मैं वापसी कर सकता हूं, एक भी अंक और गंवाते तो फिर मामला पलट जाता, लेकिन उन्होंने वो एक अंक आने ही नहीं दिया और एक के बाद एक वो दांव चले, वो मूव किए पैर के ऊपर, खास तौर से उनके जो 3 आक्रमण उन्होंने किए थे जिसपे 2-2-2, 6 अंक उन्होंने कमाए, कुल मिला के एक साथ उन्होंने 8 अंक एक के बाद एक कमाए। और जब मुकाबला समाप्त हुआ उस समय उनका हाथ ऊपर किया गया, स्वर्ण पदक, गजब बाउट, गजब कुश्ती। हमें याद आ रही थी ये बजरंग पुनिया, ये भी इसी 65 किलोग्राम भार वर्ग में होते थे, उसके पहले योगेश्वर दत्त। तो ये जो एक सिलसिला है, एक से एक बेहतरीन पहलवान निकालने का, बजरंग पुनिया की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आगे निकाला है।
1: Right, and in boxing, very quick updates coming to you. The best news of the day for all our listeners who are tuning into Akashvani right now, ki Bharat ki Lavlina Borgohain also bagged the gold medal by defeating China's Bao Zi in the women's 75 kg gold medal bout at the Asian Games today. A beautiful birthday present for the birthday girl, who also scripted history by becoming only the second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. Unke saath saath Parveen Hooda also held a nerve in a closely fought final against Chen Nien Chen, and she was also able to win her bout by a 3-2 split decision and secured the gold medal in the women's 65 kg category. And then finally we saw Ankush Pangal also up against Kim Min Seong in the men's 80 kg final bout, where he was able to defeat him straight down 4-0 and thereby bring in the gold medal for India.
0: Aur bahut sunahra kshan hai, isi samay Ankush Pangal ke gale mein swarn padak pehnaya ja raha hai aur rashtragan ki dhun baj rahi hai Japan mein.
1: With that, it's a wrap from me, Sakshi Mandwala and Anupa Patak for now. We'll be tuning in back again at 5:30 PM with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. For now, thank you so much for tuning in. Goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: நேயர்களே, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: 2026 ஐஜி நகோயா.
2: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashwani. Main Husakshi Mandwal. Mere saath is waqt yahan par maujood hai Anupam Pathak and the big news jo hum dono aapke liye abhi lekar aa rahe wo ye hai ki bhartiya mahilaon ka final gold medal ka muqabla aaj chal raha hai bharat aur china ke beech mein.
3: Ji bilkul, jis samay humne apni pichli update khatm ki thi usi samay shuruaat hui thi is muqable ki. Bharat swarna padak ki talash mein, jo usne aakhri baar 1982 mein jeeta tha, wahi china defending champion. Bharat puri taqat laga de raha hai कि चीन को आगे ना पहुंचने से, और मजे की बात कह रही है, आज लगता है जो किस्मत की देवी होती है वो भी मेहरबान है, लेकिन वो मेहरबान उन पर होती है जो मेहनत करते हैं, और भारतीय टीम पूरी मशक्कत के साथ इस मैच में बने रहने का प्रयास कर रही है. हुआ यह है कि पहले क्वार्टर में ही बहुत शानदार मौका मिल गया भारत को, और भारत ने कोई चूक नहीं की, और लाल रंग सियामी ने अब जो अपना 200वां मैच खेल रही हैं, आज उन्होंने एक रिकर्व पास पर क्या जबरदस्त शॉट लगाया जो किसी भी गोलकीपर को रोकना बहुत मुश्किल होता, और भारत 1-0 से आगे हो गया. उसके बाद से भारत डिफेंस में ज्यादा है, उतने मूव नहीं बना रहा है. चीन पूरी कोशिश कर रहा है, 5 पेनल्टी कॉर्नर चीन को मिल चुके हैं, भारत के हिस्से में सिर्फ एक आया है, और आप विश्वास करेंगे दूसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला चीन को, और उसको सविता पूनिया ने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अकल्पनीय सा सेव करके दिखाया, जैसे उनको पता था कि ये शॉट कहाँ आने वाला है और किस जगह आएगा. अपने ग्लव्स में गेंद को रोका और चीन को बराबरी करने से रोक दिया. उसके भारत से चीन लगातार हमले कर रहा है, लेकिन भारत अपनी इस लीड को बरकरार रखे हुए है. पोजिशन चीन के पास ज्यादा है, लेकिन स्कोर लाइन भारत के पक्ष में. अब हाफ टाइम हो चुका है, और दूसरे हिस्से में यानी जो तीसरा क्वार्टर होता है उसका भी आधा वक्त हो चुका है. लीड अभी भी 1-0 चीन.
2: Yeah, hoping that the stars align today for the Indian hockey women's team and that we are able to get the gold in this. All eyes are right now on the screen, and hopefully in the next maximum 30 minutes, 20 to 25 minutes, we'll get to have the result. Lekin aapko ye bata de, kyunki aaj ke din ka ye gold ka muqabla hai, to aaj

0: काफी सारे पदक भी भारतीयों के नाम लगे हैं अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में। आर्चरी के अंदर हमने देखा कि कैसे विमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम आज गोल्ड मेडल लेकर आई, हमारे लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो भारत इस तरह के इवेंट के फाइनल्स में भी पहुंचा। मैं बात कर रही हूं विमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। वहीं रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेंस रिकर्व टीम फाइनल के अंदर आज भारत को दो सिल्वर भी मिले। एंड द अमेजिंग थिंग हैज बीन कि डिंजी के इवेंट में भी, यानी सेलिंग के इवेंट में भी, भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया नेत्रा कुमानन ने। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैड अदर इवेंट्स इन विच द मेडल्स केप्ट ऑन पोरिंग इन। इन बॉक्सिंग वी हैड इंडियाज लवलीना बोरगोहेन हु गॉट the gold for India in the 75 kilogram category defeating China's Bao Zi. And then uske baad humne dekha Parveen Hooda bhi hamare liye aaj gold lekar aayi in by a split decision of 3-2 that went in favor of the Indian. And finally we had Ankush Pangal who was up against Kim Min Seong in the men's 80 kilogram final, aur uske andar bhi aaj Bharat ko gold medal mila. To overall Anupam, एक अभी मैंने छोड़ दिया इवेंट रेसलिंग का आपके लिए, लेकिन दिन बहुत खूबसूरत रहा है।
1: बहुत खूबसूरत दिन, आज पदकों के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया दिन रहा है। और ये जो स्वर्ण पदक है ये सुजीत कलकल ने दिलाया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में। और क्या जबरदस्त उन्होंने मैच खेले, एक के बाद एक के बाद एक चार बाउट जीते, फाइनल में पहुंचे। और उसके पहले सेमीफाइनल में उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया। शायद उनकी वो कसक दूर हो गई होगी जिसमें वो ओलंपिक क्वालिफाई करने में बस किस्मत की वजह से चूक गए थे। एक बार तो हवाई जहाज ने डिले कर दिया, वो क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लेने ही नहीं जा पाए थे, तो शायद वो कसक खत्म हो गई होगी। और उसके बाद स्वर्ण पदक जीत कर तो हो ही गई, क्योंकि क्या जबरदस्त उन्होंने फाइनल खेला तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीव के विरुद्ध। एकदम पीछे थे, किसी को शायद उम्मीद न रही हो कि अब जीत सकते हैं। 7 अंकों का अंतर आ गया था, एक अंक और चाहिए था विपक्षी को वहां से वापसी की, और एक के बाद एक अंक बनाते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में किया।
0: जी एंड वेरी क्विकली टू सम इट अप, अभी भी थर्ड क्वार्टर समाप्त होने में दोस्तों अमूमन 4:30 ही बचे हैं, और अगर ये क्वार्टर भी गोललेस जाता है तो भारत अपनी एक गोल की लीड बरकरार रखेगा चाइना के ऊपर। चाइना को अभी भी एक गोल करना होगा हॉकी के इस फाइनल मैच में जो गोल्ड मेडल का मैच हो रहा है भारतीय महिलाओं का हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। तो आखिरी क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि चाइना हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव आए, बिकॉज दे वुड देन वांट टू एटलीस्ट टाई द स्कोर सो दैट इट कैन गो इनटू शूट आउट। लेकिन वो तो समय ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आज भारत ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहता है तो पहले तो 1982 के बाद अब ये पहली बार होगा जब भारत फिर से एक गोल्ड मेडल लेकर आएगा हॉकी में। और उसके साथ साथ भारत फिर मेडल टेबल में भी दोस्तों 16 गोल्ड मेडल्स की बदौलत हो सकता है कि उज्बेकिस्तान के साथ स्वॉपिंग कर पाए। अभी भी उज्बेकिस्तान के पास 17 गोल्ड मेडल बने हुए, भारत के 15 है। भारत को दो गोल्ड मेडल दौर जीतने उज्बेकिस्तान के साथ बराबरी करने में, और उसके बाद विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस, बट एटलीस्ट दिस गोल्ड विल डेफिनेटली हेल्प इंडियाज होप्स ऑफ गोइंग अप ऑन द मेडल टैली इंक्रीज। उसके साथ अभी फिलहाल वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ अनुपम पाठक। हम आपसे दोबारा एक बार जुड़ेंगे शाम को 6:30 विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேயர்கள் இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
3: நேரம் 5:36. வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ அலையோடு விளையாடு. எஸ் இன்னைக்கு ராக் பிட்ல நம்ம ஆர்ஜே சாண்டி தான் ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து யார் யார்ட்டெல்லாம் என்னென்னலாம் பேசி என்டர்டெயின் பண்ண போறாங்கன்னு அவங்களே கேட்டலாம்.
5: வெல்கம் பேக் டு அலையோடு விளையாடு. நீங்க கேட்டிருக்கிறது ஃப்ரம் ரெயின்போ 102.8. இப்ப வந்து ராக் பிட்ல தான் நின்னு நம்ம இன்னைக்கு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இப்ப ஒருத்தவங்க நம்ம கூட ஜாயின் பண்றாங்க. உங்க பேர் சொல்லுங்க.
6: ஷெரின் ரியாராஜ்.
5: பாண்டி சுத்தி பாக்கலாம்.

0: நேயர்களே, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தினை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: கேம்ஸ் 2026 கி அப்டேட் கா
2: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐஜி நகோயா.
3: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम. मैं हूं अनुपम पाठक, अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ. अभी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है हॉकी का मैच. ऐसा जबरदस्त, यादगार, कभी भी ना भूल पाने वाला मैच. भारतीय महिलाओं ने 1-0 से डिफेंडिंग चैंपियन चीन को परास्त किया, लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया और साक्षी बेकरार है बताने के लिए.
4: ऑफ कोर्स इट्स बीन अ थ्रिलर नेल बाइटिंग एंड टू द मैच शुड आई से, बिकॉज़ इंडिया got the goal very early on in the first quarter itself, but after that the Indian defense stepped up and a beautiful penalty stroke defense that Sabata Punia did for us early part of the game definitely went long way in helping solidify India's chances towards making sure that the defense was all round surrounded the Chinese and never let the China make an entry into the game. China got several penalty corners also, but they could not even convert one penalty corner in their favor. 5 penalty corners unko mile first half ke andar hi, aur fir bhi usko bhi wo convert nahi kar paya. Humne dekha ki by the end, jo kehte hai na, last quarter mein China itna zyada desperate ho gaya tha ki they put everything into the attack. Unhone apne goalkeeper ko bhi bahar karwa diya and unki jagah ek player le aaye just to go all in, lekin fir bhi wo wahan par goal score nahi kar paye to level the score. As a result, the 44-year-old Wade, जी हाँ, 1982 में भारत को पिछली बार या आखिरी बार गोल्ड मिला था और आज भारतीय महिलाओं ने ये ड्राउट खत्म कर दिया दोस्तों. They have broken this drought after 44 years to help India get that coveted gold medal in the Asian Games. And as Anupam just mentioned, this also cuts our ticket to the 2028 Olympics and the big one that comes as for us. A lot of changes, positive changes that we see now in this team. आप ये देखिए, चाइना के पास बॉल पोजिशन भी भारत से ज्यादा ही रहा. 52% तक चाइना के पास बॉल पोजिशन रहा, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए. समाओ हमने आज देखा और एक चीज सामने जो आई अनुपम, वो ये थी कि चाइना का हमेशा से ही डिफेंस स्ट्रांग रहा है, अटैक उनका स्ट्रांग पॉइंट रहा नहीं है, लेकिन आज वो पहले से ही पहले क्वार्टर में ही बैकफुट पे आ गए थे बिकॉज भारत ने गोल दाग दिया था. तो आज उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि अटैक करना ही करना था, और समहाउ इंडिया ने उसके बाद अपने डिफेंस को इतना प्यारा रखा कि चाइना को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो एक एक की बराबरी भी कर सके.
3: दरअसल पूरा मैच अगर आप देखिए तो आज भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ही अलग. चीन को चौंकाने वाली रणनीति उन्होंने बनाई और किस्मत ने साथ ये दिया कि अर्ली गोल आ गया. बहुत

0: पहले ही, और क्या जबरदस्त गोल था, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल लाल रंग सियामी ने किया था। अपना 200वां मैच खेल रही थी आज, और रिवर्स शॉट लिया था उन्होंने डी के भीतर, और उछलता हुआ शॉट, ऐसा शॉट जिसपे शायद बड़े से बड़ा गोलकीपर भी उसको शायद ही रोक पाए। वो जो बढ़त मिली उसके बाद से भारतीय टीम ने अपना गियर ही चेंज कर दिया।
1: Right.
0: चाइना का डिफेंस बहुत अच्छा है, उनका गोलकीपर दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर्स में है। भारत ने कहा अब हमने ये लीड ले ली, अब हम भले आप हाफ में खेलते रहें या हम पर अटैक करें, हम अपने डिफेंस को एकदम मजबूत कर लेंगे और आपको गोल नहीं करने देंगे। और एक शानदार क्षण और था जब सविता पूनिया ने पहले क्वार्टर में बिच्छू थी गोलकीपर, दूसरे क्वार्टर में गोलकीपर बदला गया, सविता पूनिया को लाया गया और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। देखिए पेनल्टी स्ट्रोक में हॉकी में उसको रोक लेना, और ऐसा रोकना कि अंधा चुक्की नहीं है, वो साफ पता है जैसे उसको कि ये शॉट यहीं आने वाला है, लेफ्ट साइड में मेरे आने वाला है, किनारे आने वाला है, इतना किस तेजी के साथ आने वाला है, गजब का डिफेंस। तो शायद भारतीय टीम उसके बाद बहुत जोश में आ गई, और चीन का एंड में आपने बताया इन्होंने अटैक बहुत किया। मुश्किल होता है इस रणनीति पे खेलना कि हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, एक बार लीड ले लिए, एक गोल की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती, लेकिन हम लीड आ गई है, हम इसी को डिफेंड करेंगे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, हम 40 मिनट तक डिफेंड करेंगे।
1: Yes.
0: कमाल करके दिखाया आज।
1: ऑफ कोर्स इंडिया हैड देयर प्रायोरिटी स्ट्रेट टुडे, गोल हो चुका है, उसके बाद अपने डिफेंस को इतना स्ट्रांग रखो कि सामने वाली ऑपोजिशन को मैच के अंदर आने का मौका ही नहीं दो, एंड दे जस्ट वेंट ऑल आउट ऑन द डिफेंस एंड वर एबल टू देन कीप दैट लीड मेंटेन टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी लास्ट सेकेंड, एंड देयर बाय हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, लेडीज एंड जेंटलमैन टू ऑल आवर लवली लिसनर्स, because the Indian women's hockey team has brought us that gold after 44 years.
0: आज का छठा स्वर्ण पदक, आज का दिन तो गजब रहा है भारतीयों के लिए पदकों के हिसाब से।
1: Yes, a quick wrap on the medal table also over here. इसके साथ ही आज अब भारत के सारे इवेंट समाप्त हो गए। भारत की पोजीशन अब पांचवें स्थान पर है, जिसमें है उनके पास 16 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 76 मेडल्स। आपको बता दें आज जो मेडल्स आए हैं, हॉकी में हमारे पास एक गोल्ड आ गया, बॉक्सिंग में हमारे पास 3 गोल्ड आए, रेसलिंग में 1 गोल्ड आया, आर्चरी में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, सेलिंग में 1 ब्रॉन्ज, और सेपक तक्रो में 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 16 गोल्ड, प्लेसिंग इंडिया ऑन द 5th पोजीशन। दैट इज ऑल दैट वी हैड फॉर यू फॉर राइट नाउ। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक साइनिंग ऑफ, विल बी जॉइनिंग यू बैक एट द 7:30 अपडेट विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड अ रैप अप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நேயர்கள் இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தினை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
3: நேரம் 6:36. மனம் விரும்புதே நிகழ்ச்சியில வரக்கூடிய அடுத்த அழைப்பாளர் யாரு, எங்கிருந்து, என்ன விருப்பமான பாடல் கேட்க போறாங்க, கேட்கலாம். வணக்கம்.
5: வணக்கம்.
3: வணக்கம் சார், யார், எங்கிருந்து?
5: புறத்தால் புலி அடித்து புறத்தால் ஓட வைத்த பெண்களின் வீரம், பெற்ற தேசத்தின் வீரம், பாரதி எனும் பண்புலகின் சாரம், திருவண்ணை நல்லூர் தட்சிணாமூர்த்தி.
3: சொல்லுங்க சார், உங்களுடைய விருப்பமான பாடல்.
5: பசிகரா பத்துல இருந்து வேணாம் வேணாம் விழுந்து வேணாம் ஒரு பாடல், பாடலுக்கு ஒரு சின்ன கவிதை. மனதை மயக்கும் உந்தன் வசீகர விழி வலைகளுக்குள் என்னை சிறைபிடிக்க துடிக்கும் உந்தன் சிலந்தி அலை சிரிப்பு அலையில் ஈட்டி முறைகளாய் சிறைகளுக்குள் பூவாய் இதழ்விரிய புன்னகையால் எழில் புரியும் உந்தன் பூஞ்சிருப்பின் தேன் மொழிகளில் நானே தானாய் விழுந்திடுவேனா? ஒருமுறை சிரித்தாய் என்னை ஆயுள் வரை சிறை வைத்தாய்.
3: ஓகே சார், உங்களுடைய விருப்பமான பாடல் வருது கேட்டு ரசிக்கலாம். அழைப்புக்கு நன்றி.
5: நன்றி மேடம்.
3: அந்த நேயரின் விருப்ப பாடலை கேட்கும் போது
6: தங்கமான உறவுகளுக்காக பாண்டி ராம் தங்க நகை மாளிகை.
7: ஹால்மார்க் வெள்ளி பொருட்களுக்கு செய்கொலி செய்தாரும் முற்றிலும் இல்லை. 1 கிலோ வெள்ளிக்கு ₹7,000 தள்ளுபடி.
6: தங்கம் சேரும் கைராசி பாண்டி ராம் தங்க நகை மாளிகை, நேரு வீதி, புதுச்சேரி.
3: நேயர்களே, சைபாலின் இன்று ஒரு தகவல் நாளை காலை 8:55 கேட்கலாம். இப்ப அந்த நேயரோட விருப்பமான பாடல் வருது கேட்கலாம்.

0: நேர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தினை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: बीसवें एशियाई खेलों पर आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। और भारत के लिहाज से देखें अगर तो आज की स्पर्धाएं समाप्त हो चुकी हैं और बहुत शानदार दिन रहा है आज, बल्कि अब तक इनके इन एशियाई खेलों में आज का सबसे बढ़िया दिन कहा जाएगा, क्योंकि 6 स्वर्ण पदक आए हैं, 2 रजत पदक आए हैं, 2 कांस्य पदक आए हैं। एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है, महिला हॉकी का स्वर्ण पदक, और इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते भारत की टीम जो है, महिलाओं की टीम, उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में सीधे प्रवेश मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। अब 2 साल होगा भारतीय टीम को तैयारियां करने के लिए मिलेगा, नए कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए मिलेगा, यानी पूरी तरह चाक चौबस्त होकर टीम जा सकती है। जबरदस्त मैच था, भारत ने बिल्कुल अलग रणनीति के साथ खेला। इसके पहले भारत ने गोलों की झड़ी लगा रखी थी पूल के मैचों में, लेकिन यहां पर आज चीन की जबरदस्त टीम सामने थी। चीन की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको उन्होंने जारी रखा। चीन को बिल्कुल उन्होंने कहना चाहिए आड़े हाथों लिया। अच्छी बात यह है कि पहले क्वार्टर में ही भारत को मौका मिला, और क्या शानदार, शायद टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल कहा जाएगा, लाल रंग सियामी ने किया, रिवर्स स्टिक से बहुत शानदार रिवर्स शॉट लगाया था उन्होंने, थोड़ा उठता हुआ बिल्कुल गोलकीपर को चकमा देता हुआ पहुंच गया था। उसके बाद से भारत ने अपनी रणनीति यह बदली कि पूरी तरह डिफेंस पे आ गए। इस एक गोल की लीड को, हॉकी में बहुत गोल होते हैं हम सब जानते हैं, उसको उन्होंने लगभग 3.5 क्वार्टर तक बनाए रखा। चीन ने बहुत आक्रमण किए, लेकिन आखिरकार वो फेल होता रहा, क्योंकि भारतीय लड़कियों का डिफेंस बहुत मजबूत था। सुशीला ने बहुत अच्छा किया, नवनीत कौर ने बहुत शानदार किया। कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि आखिरी के करीब 4 मिनट तो गोलकीपर को ही हटा दिया गया, यानी 11 के 11 खिलाड़ी आक्रमण करेंगे, चीन के लिए गोल आए, तब भी भारतीयों ने आपा नहीं खोया, सिर्फ एक मूव बनाया, उनको समय बिताना था, वो 3.5 मिनट। शानदार मैच रहा हॉकी का। स्वर्ण पदक अब देखना है, कल भारत की टीम भी पुरुषों की, वो भी स्वर्ण पदक लेकर आए तो खुशी दुगनी हो जाएगी, पदकों की जोड़ी बन जाएगी। इसके पहले आज बहुत शानदार दिन बॉक्सिंग में रहा, लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता, एशियन गेम्स का अपना ये पहला स्वर्ण पदक उनके लिए था। मणिपुर की हैं, शानदार तरीके से उन्होंने आज अपनी फाइट लड़ी, बाउट लड़ी, 5-0, तीनों राउंड में लगातार उन्होंने प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा परवीन हुडा का स्वर्ण पदक था, थोड़ा मुश्किल से आया, 3-2 का स्प्लिट डिसीजन था, लेकिन परवीन जैसी आक्रामक वो खेलती हैं, बिल्कुल वैसी ही रही ताइपे की नीन चिन येन के विरुद्ध थी, और उन्होंने भी दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। तीसरी बाउट में अंकुश पंघाल थे, हरियाणा से ही आते हैं, सेना में नौकरी करते हैं। अंकुश पंघाल ने अपने ऊपर काबू रखा, अपने स्टाइल को बिल्कुल नहीं चेंज किया, वो साउथ पा हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मुक्के बरसाए और उन्होंने भी इस बाउट

0: वो जीत कर भारत के लिए बॉक्सिंग में आज का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया 80 किलोग्राम में। आर्चरी में भारत की महिला टीम ने अंकिता भगत, कुमकुम महोद और कीर्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक पाया और सिल्वर आया मिश्रित में धीरज देवोमरा और कुमकुम महोद के साथ। और इसके अलावा धीरज यशदीप भागे और नीरज चौहान की जोड़ी ने ईरान को परास्त करके पहले प्रवेश किया फाइनल में। वहां पर दक्षिण कोरिया जो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है उससे वो परास्त हुए लेकिन रजत पदक पाया। कुश्ती में बहुत खास दिन रहा इसलिए दीपांशी की पहले बात कर लें, बहुत नई लड़की है, बिल्कुल उभरती हुई लड़की है। 50 किलोग्राम भार वर्ग में वो पहले अपनी बाउट जापान की सुशाई यूई से हार गई लेकिन उसके बाद उनको रिपेचेस में मौका मिला, उन्होंने अपनी बाउट जीती, ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला किया लेकिन कजाक की जिनेब बायानोवा से परास्त हुई। उसके बाद 65 किलोग्राम वर्ग में अकल्पनीय चीज करके दिखाई सुजीत कलकल ने, 2-9 से पीछे होने के बाद भी, यानी बिल्कुल हर एक को लगने लगा था ये बाउट तो गई, ये कुश्ती तो सुजीत के हाथ से गई और स्वर्ण पदक तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या वापसी की है। कहते हैं ना, एकदम जब बिल्कुल आप एकदम कोने पर पहुंच गए हैं, गिरने वाले हैं, कगार पे आ गए हार के, वहां से उन्होंने वापसी की, लगातार 8 अंक कमाए और सुजीत कलकल का ये स्वर्ण पदक बहुत बहुत दिनों तक बहुत याद रहेगा। इसके अलावा और भी भारत की ओर से बहुत अच्छी कुछ प्रदर्शन रहे हैं। सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने डिंगी में उन्होंने जो पहले कहलाती थी लेजर रेस कहाया करती थी ICLA की स्पर्धा, उसमें उन्होंने कांस्य पदक पाया। सिपक टोकरा में भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन रहा है भारत के लिए। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कल क्रिकेट का मैच है, फाइनल मैच है पाकिस्तान के विरुद्ध। हॉकी में मलेशिया के विरुद्ध पुरुष की टीम उतरेगी। आर्चरी में कुमकुम महोद, धीरज देव बुमराह, नीरज चौहान कोशिश करेंगे स्वर्ण पदक पाने की। कुश्ती में 5 पहलवान हैं, सागर जगलान, अंतिम पंघाल, अमन, दीपक पुनिया, मनीषा। इसके अलावा गोल्फ में प्रणवी क्या करती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं भारत के लिए। R7, Rugby 7, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल में भी होंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छे स्थान पर आ गई है, 5वें स्थान पर आ गई है, 16 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 35 कांस्य पदकों के साथ 76 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। तो अब आपको ये बताते हुए कि हम कल फिर हाजिर होंगे 9:30 बजे अपनी इस अपडेट की श्रृंखला के साथ। अब अनुपम पाठक यानी मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தினை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். FM ரெயின்போ புதுவை 102.8 இனி வரக்கூடியது வந்து மனம் விரும்புதே. சோ இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியில வரக்கூடிய அடுத்த அழைப்பாளர் டைம் கரெக்டா 7:36:30 ஆகுது. வணக்கம்.
3: FM ரெயின்போக்கும் மனம் விரும்புதே நிகழ்ச்சியின் அன்பான அறிவிப்பாளர் பாரதி மேடம் அவர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம்.
2: மாலை வணக்கம்.
3: நான் திரு
2: கூறுவது யார் என்று கேட்க வந்தேன்.
3: நான் திருவாரூர் மாவட்டம் கொடிக்கால் பாளையத்திலிருந்து சாகுல் அமிதராஜா. நல்லா இருக்கீங்களா?
2: நலமா இருக்கேன் சார், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?
3: நல்லா இருக்கேன், இரவு நல்லா இருக்கேன் மேடம்.
2: ஓகே சார், சொல்லுங்க உங்களுடைய விருப்பமான பாடல்.
3: எனக்கு இந்த மாலை வேளையில் அழகான பாடல், துள்ளாத மனமும் துள்ளும் படத்திலிருந்து தொடு தொடு நிலவே என்ற ஒரு அழகான பாடல் மேடம்.
2: ஓகே, உங்களுடைய ஃபேவரட்டான சாங் வருது சார், கேட்டு ரசிக்கலாம். அழைப்பிற்கு நன்றி.
3: நன்றி மேடம்.

0: games in Aichi Nagoya. Aya Mega, October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
1: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां, जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
0: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच की प्रकाशा तक पहुँचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर

0: आरती खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर जसाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर-23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. Three Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all three emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
0: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगजाओ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए। लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया के तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त

0: बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's squadron teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सिपक टोकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगू स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाईबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो जापान ने शुरू से ही लीड ले ली थी। एक समय 12-8 से जापान आगे हो गया था, लेकिन भारतीयों ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और स्कोर 12-13 पर ला दिया, यानी अंतर सिर्फ 1 अंक का। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन निर्णायक मौकों पर उनसे हुई चूक और जापान ने मौकों का फायदा उठाया, 15-13 से सेट और मैच जीत लिया। भारत ग्रुप में अपराजेय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और ये भारत का क्वाड्रेंट स्पर्धा में पहला पदक है और एशियन गेम्स के इतिहास में सिपक टाकरा में कुल मिलाकर तीसरा पदक। सिपक टाकरा टीम को बहुत साधुवाद।
1: We move on to the golf course, where the competition is heading towards its business end, and the Indian contingent had plenty to play for in the round 3. Sakshi Mandwal has the details.
3: Pranavi Oars fired a 4-under-66 to take a 9-stroke lead heading into the final round of the women's individual golf event. India are also second in the team standings behind China, with Aditi Ashok and Deeksha Dagar still in contention for a team medal. In men's team golf event, Team India finished 6th after round 3 with a combined score of 11-under-par-409, carding 136 in the third round. Saptak Talwar continues to lead individual men's efforts, staying in the top tier after solid opening rounds.
1: It was a busy day for the Indian cyclist at the ISU Velindrome, action across 3 events. In the men's Keirin, Ronaldo Singh crashed out in the repechages after taking 6 in the heat, while David Beckham mounted a gritty run through the rounds to make the semi-finals, ultimately finishing 6th in Final B to secure 12th place overall. In the men's Madison final, the duo of Harshveer Singh Sekhon and Vishwajit Singh battled through the demanding 200-lap race, finishing 8th. Meanwhile, Harshita Jakhar gave her all across 4 phases of women's Omnium, the scratch, tempo, elimination and points races, finishing 11th overall with 54 points. Taekwondo was also on India's program today with Kashish Malik carrying the Indian challenge. Sakshi Mandwal has more.
3: India's Kashish Malik suffered a 1-2 defeat to Kazakhstan's Rita Bakisheva in the mixed individual virtual Taekwondo quarterfinals. Malik's campaign came to an end after she lost out on the head kick count, with the other kick metrics remaining closely matched between the two competitors. This also put an